जाइए प्रभु कैदा, आन न भी आ तेरी समसर, तेरे बिना होर कोई सुझदा नहीं, क्योंकि होर किने बा फड़नी है, जिदे नाल प्रीतां पाईयां ए प्रीतां कुड़ियां हो गईयां, ए निरंकार तेरे चरणा दी प्रीत सच्ची है, सारे दरगाह के तेरी चरणा विच पुजे हां, इस लई नानक अवर न सुजई हर बिन बख्शन हार, तू बख्शिंद है, तू बख्शिशां दा सागर है, जे मेरे पापां दे दो चार बेड़े डुब भी गए सागर नूं की फर्क पवेगा।

ज्ञान निरकर्कशीलात् असुरस्वारयते क्रियात् नानित नावै वाज सुनात् राग धीरी महिला चंपा हरते जन सदगर सदुखा बिना करो गुरपास हम कीरे चरम सदगुर शरणाई।

गुरमुख नाम मेरा प्राण सहाय, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वर पाओ अड़ेरे, जन हर हर सरदार प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्तस, मिल संगत गुण प्रयास। जन हर हर हर रस नाम न पाया, हे भावहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जन हर जन सतगुर संगत पाए, तिन तौर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत्संगत जत हर रव पाया, मिल जन नानक नाम प्रयास। राग गूजरी महला पंजा, काहे रे मन चितवें उद्यम।

अग्रंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समान एक दाते भारी जी सब तेरे चोज विदान मूं आपे दाता आपे पोता जी हो कुछ दिन अवर न जान मूं पार ब्रह्म बेअंत बेअंती तेरे क्या भया दोखान जो सेव है जो सेव है तुम्हें ज्ञान नानक तन कुर्बान

सोई गुरु संगिया हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सदर प्रजा जन आप सवारी, शिव कंको शिव गुण सुख दियो, शत्रन गोपल नो बद कियो, घट घट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पछानत, कीर्ति दे कुंजर सूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते सुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जाव और करकरा तरतारा, प्रजा तहत तर दे अपारा, जाव आ कर कर दो कबू, तो मैं मृत दे कर सबू, जेते भजन से सब तार, आप अपनी भूत उचार, तुम सभी ते रहती आलम, जांत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीला अनाद असंभ, ताका मूल उचार देता, जाको फिर न पाव देता,

Sarebbe seduta al muso voi, dove c'è c'è la chiama poi. E gubara, gente me sombara, al forte tae ubara, tiene nara nam tiharo ka, dar di gusto dove tera, al lo che fa, me sharna teari, ava delle ubari, sarabator no osai, दुष्ट दोग से ले भिक्याई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ कर पूर्ण शुभ रहता केल वे सगल वे को हरता दुष्ट दुखियन को क्षय करता श्री अस्भुज जप हे दयाला पूर्ण कर ग्रंथ काला मन वांछत फल पावे सोई भूख न से व्यापक कोई अड़ल सुने गो जो जाए सोरस न पावे सुने मूर्ख चलाए चतुर पायावे मूर्ख दर्द पहो नित न जन्नर के रहे वो जो जाती एक बार चौबई को कह चौबई संबत सत्र सह सुनिजय अर्थ सह सुन किजय भाद्र सुधी अठवी रविवार तीर सुद्र ग्रंथ सुधारा ऐसा श्री चरित्रो पखयाने श्रेया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त सुध मस्त दोहरा दा जान कर दास पर जय कृपा पार आप बैरा कमोए मान क्रम वचन विचार चौबई नैना गलेश प्रथम नाऊ किशन विशन कऊ न क्याऊ कान सुने पहचान तिनसो जब लाची लोरी पल इनसो महाकाल रखवार मारो महालो नहीं किन कर धारो अपना जान करो रखबार माहे गए की लाज विचार अपना जान मुझे सुख पड़ी है चुन चुन शत्र हमारे मरिय देश तेज जग में दो चल राख आप मोहे और न दल तुम मम करो सदा प्रपार तुम साहेब में दास्तियार ज्ञान अपना मुझे निवाज आप करो हमारे सब काज हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब न्याजा जा जान कर कृपा करो बोहे हार पड़ा मैं आन द्वार बोहे अपना जान करो सत्पारा तुम साहेब में किंकर धारा जा जान दयाबारो हमरे सा बैरियन सुधारो प्रथम करो भगवत को ध्याना और करो कविता भेद नाना कृष्ण जता मत चरित्र उचारो रूप होए कब ले सुधारो कब वाचा दोहरा जो निज प्रभु सुनता वो कहो जग माए जो ते प्रभु को त्याए है अंत सुर को जाए दोहरा हर हरचन दोए एक है देव चार कशनाए जल से उपज तरंग जीव जल ही दिखे समाए दोहरा जब आए स प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप से सब कह सुनाए कब आज दोहरा छाट भयो में जोड़ कर वचन का सिर आए पंत चला तब जंत जब तुम करो सहाय तब ते को अंतरे नहीं राम रीम पुराण पुराण अनेक है मत एक न माने सिमृत शास्त्र भेद सवे वो भेद कहे हम एक न जाने श्री स्पान के बाद तुम रही कर मैं न कहो सब तो एक बखाने दो

अर्नाडों तू मन मेरे तू सब विसारण अंगीकार ओ करे तेरा काज सब सवारण सबना गल्ला समरथ स्वामी सोचो मनो विसारे कै नंक मन मेरे सलर और नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते है कर्तों तेरे सब शह जिस देश हो पावे सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शंत लेरे कै नान सचे साहेब क्या नहीं करते है साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुकरा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसे जिन इच्छा सब पुजाइया सदा प्रवान किता गुरु बिटो जसियां ए वड़े आईया कै नानक सुनो संत शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंचावद तरस भागै तरस भागै शब्द वाजे करा जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल अंकत मारिया घोर कर्म पा तुम जिनको से नाम हर कै लागे कै नानक तै सुख होआ जित घर अनहद वाजे मुंदावनी महला पंजवां ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਾਧਾਰੋ ਏ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਜਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਔਰ ਧਾਰੋ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਨਾਨਕ

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, बई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू

मुक्ति मंग, कल्याण मंग, ता उस वेले पिता श्री मेहता कालू सन्यासी दे रूप विच देव मूर्ति नु कहंदे, जे मैं मुक्त होवां, कल्ला मुक्त होवांगा, कल्याण मंगा।

जिस तरह कोई मूर्ति की पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बिठा के उसकी पूजा करा, उसकी सेवा करा, मैं भी उसके दर्शन करा।

होर मन उदास हो गया, मेरे घर नारायण प्रगट होवेगा, मैं पहचान नहीं सकांगा, कभी भी नहीं पहचानना।

अपने सन्यासी पिता मेहता कालू ऐ बालके तुहाडा भी दूसरा जन्म होवेगा, हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच गृहस्थी होवोगे, फिर तुहाडे घर ओ नारायण आप प्रगट होवेगा।

हाथ जोड़ के धन गुरु नानक साहब लम्या पै के डंडौत करते हैं ते नाले कहंदे ने ऐ दाता तू ते मेरे घर पुत्र बन के जन्म लिया तू ते मेरे घर पुत्र बन के जन्म लिया पर मैं ही तेनू पहचान ना सकिया कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे पर जद सिर चुकया पिता मेहता कालू जी हैरान हो गए कमरे अंदर ते अंधेरा है ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश एकदम उठ के कमरे विच बाहर आए और अपनी घरवाली

मैं अरदास की थी, मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरी गोद में खेड़े।

मैं तेनू पहचान ना सकिया। और एक बारी ऐ दाता 20 रुपया के बदले मैं तेरे मुंह ते चपेड़ भी कट मारी।

एकदम उठ के खड़े हो गए और धन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नु गल दे नाल लगाया ते नाले ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है

ओ माता पिता नु दुख दे, ओ माता पिता नु ठोकरा मारे, ते बच्चियां दा फर्ज है। जन्म देने वाले माता पिता दाते हैं, दाते दा शुक्र किया जाता है, दाते दी सेवा कीती जाती है, दाते नाल मेने ताने नहीं पिड़े जाते। सासंगत कल्ला सुनना नहीं, सिख्या भी लैनी है, अपने माता पिता दी सेवा करनी, माता पिता दा आदर मान करना। जेड़े बच्चे अपने माता पिता दी सेवा नहीं करते, कोई समझ लैन उन्हां दा दान पुन भी सफल नहीं होंदा। जेड़े माता पिता दी सेवा नहीं करते, उन्हां दा कीता होया दान पुन तीर्थ यात्रा पाठ पूजा भी सफल नहीं होंदी।

अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना, पर देखदे आं एक मां बाप अठ धियां पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद उही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धियां पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जद बच्चे वड्डे हो जाते ने वो फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धियां पुत्रां ते हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा

इस बुढ़ी मां दा सहारा छोटा जिहा पुत्र मालक दा पाणा वरत्या। दुखां ने इस माता नूं घेरा आण पाया, पाणा इंज वरत्या।

आखण लगा मेरा बिरध बापू जो इस घर दा मालिक सी हो गुजर गया। इन्हां चावलों वल देख के

रोना मैनू चाहिदा है जिनू अजे पति परमेश्वर मेरा मालक ओ प्रभु नहीं मिलिया। मालक रहमत करे मैनू भी मेरा पति

कौन कौन दुखी है। पहला दुखी जहान ते ओ समझो, पहला दुखी जहान ते ओ समझो, जेदी नारी ना आगे आकार होवे। दूजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेदे घर पुराना बीमार होवे। तीजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां दा कर्जदार होवे। तीजा दुखी जहान ते ओ समझो, जेड़ा पीढ़ियां दा कर्जदार होवे। ते सब तो दुखी जहान ते ओ समझो, जेदा बाणी दे नाल ना प्यार होवे। एवी ता एक दुख है।

राग गौड़ी ग्वारे विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच ऋषभ पंचम अते अवरोह विच पंचम वर्जित है। इस दी जाति औड़व शाड़व वादी गंधार संवादी धैवत अते समा शाम है। इस राग विच गुरसिख हर बोलो मेरे भाई शब्द का कीर्तन कर रहे हैं भाई अवतार सिंह।

सचमुच जदों कोई सच्चे मनो नारायण कहंदा है ता पावे ओ गुनाहगार है पापी है ओदा भी उधार हो जांदा है। इस पौड़ी विच पाए गुरुदास जी ने अजामल पापी दा जिक्र कीता है। कितना पापी जिदे बारे बाणी विच साहिब जी बयान करदे ने, अजामल पापी जग जाने। इस अजामल पापी

जो गुरु कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। भाई जो गुरु कहंदा है ओ मनो। जे गुरु रोकदा किसे पासे तो रुक जाओ, क्योंकि गुरु हमेशा भला सोचदा। पर अजामल दा मन अज वस विच ना रहा। अजामल कहन लगा केड़ा गुरु नु पता लगना है, अज बाजार विच चलांगा। अजामल ने करों तैयारी की थी, करों तुर पिया। अजामल शहर च दाखिल होया, बाजार विच वड़िया। ए बाजार सी वेसवावां दा। कलावती नाम दे एक वेसवा हार शिंगार करके बैठी है। अजामल ने उस वेसवा नु देख लिया, तुर गया। पर उदा मन उस वेसवा वाल रह गया। पाठशाला पहुंचे है, पर अजामल दा मन अज पढ़ाई विच नहीं लगा। पढ़ाई पूरी हुई, अजामल वापस तुरिया। वापस फिर उसे बाजार विचो निकलिया जिड़ा वेसवावां दा बाजार सी। ते कलावती नाम दी वेसवा ओ हाली भी बैठी है। उस वेसवा नु देख के अजामल फिर वापस अपने घर परत आया। हुण रोई दा काम बन गया। वेसवावां दे बाजार विचो आना, वेसवावां दे बाजार विचो जाना। ते हौली हौली ए अजामल कलावती नाम दी वेसवा कोल जान लग पिया। ता मन जिहड़ा सी पढ़ाई वल्लों हट गया। शरीर भी हुण तंदुरुस्त ना रहा। पढ़ाई विच भी पिछे। गुरु नूं पता लग गया कि अजामल जिहड़ा है ए हुण पाप करन लग पिया। भाई गुरदास जी बयान करदे ने, पतित अजामल पाप कर जाए कलावतनी दे रहा।

देख अजामल तू राज पंडित है, तू लोकां नूं उपदेश देना है, जे तू माड़े काम करेगा ते लोकां नूं किवें समझावेगा।

पुत्र पैदा हो गए, अजामल करदा की है, जंगल विच चला जांदा है, जाल लगांदा है, पंछी पकड़दा है, कुछ पंछी मार के सब्जी बना लेंदे ने, कुछ पंछी वेच के आटा दाल ले आंदे, गुजारा करदे। जेड़े पुत्र पैदा हुए ओ भी माड़े कर्म करदे ने, अजामल दा शरीर रोगी हो गया, क्यों के गुरु साहिब जी बाणी विच कहंदे ने, दुख तदे जां विसर जावे, जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला देंदा, परमेश्वर दा डर मन विच कढ देंदा, फिर पाप करदा, ते जिहड़ा पाप करन वाला है अंत ओ इन्ना दुखी हो जांदा कि पछताण दा मौका भी नहीं मिलदा। कई वारी अजामल शरीर रोगी हो गया, पुत्र भी पापी निकले, छे पुत जाए वेसवा, उस वेसवा ने छे पुत्रां नूं जन्म दिता, पापां दे फल इच्छे लिया, पाप कीते सन ते पापां दा फल पाप ही मिलिया, अत दे दुखी हो गए ते हुण सोचदे ने, गुरु दा कहना नहीं मन्निया, पिता दा कहना नहीं मन्निया, ते आप भी दुखी ते औलाद भी

जंगल चला गया। दूसरे पास से कलावती वेसवा जेड़ी अजामल दी घरवाली बन चुकी, घर दे बाहर खलोती है। कुछ महात्मा महापुरुष उस पास से आ निकले। कलावती ने उन साधुआं नू संता नू अपने घर बिठा लिया। आप बाहर खड़ी होके अजामल दी उड़ी करन लगी। थोड़ी देर बाद अजामल आया, चादर मोड़े ते मारी। कुछ पंछी ने चादर विच चादर खून दे नाल भरी हुई। कलावती कहन लगी अजामल नू, ए जड़ी पापां दी पंड लियांदी है इहनू बाहर रख दे। घर संत आए ने, सारी उम्र पाप कमाए ने, किसे दा कहना नहीं मन्या। कोई चंगे कर्म कीते ने किसे वेले दे, कि अज महापुरच साडे घर आए ने। आओ संतां दी शरण पै चलीए, हो सकदा है

के इदा नाम नारायण रखाइए। अजामल कलावती दे नाम कलावती दे नाल धर्मशाला नू चल पिया सतवें पुत्र।

गुरमुख नाओ नारायण कया। जदू ये गुरुद्वारे गए, गुरु दे द्वारे गए, ते महापुरुषा ने अजामल दे सतवें पुत्र दा नाम नारायण रखिया। गुरमुख नाओ नारायण कया। गुरमुखा ने महापुरुषा ने कहा, अजामल तेरे पुत्र दा नाम असी नारायण रखिया है, इस नूं तुसी

अजामल बीमार हो गया, मंजीते पे है। एदा नारायण पुत्र कोल खेड दे, छोटा पुत्र होने करके प्यारा लगता है। हर वक्त पुत्र नारायण करता रहता है, ते होन भी पुत्र नारायण करके उसनु बुला रहे है। अंत समा आया, अंत समा हर इंसान का, हर चीज का अंत है। अजामल का भी अंत वेला आ गया। जमदूत लैण वास्ते आ पहुंचे। जदू जमदूता नू अजामल ने देखे, ते अजामल का मन कंब गया।

0: टेक है, क्या गुण तेरे साथ माली शुरुआत है, मैं मूर्ख की केत की बात है, कोट अपराधी दरिया रे, गुरु नानक जन सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

नित्य सारे संभाले। प्रतपाले निसार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर जियो नाम परियो रामदास, हर जियो नाम परियो।

रियासत दे विच राय कोट दा मुसलमान चौधरी राय कला मिलिया अते गुरां दे नाल लम्मे जटपुरे जा ठहरिया बेनती कीती गुरु जी आप हिंदू मुसलमान दे सांझे पीरो दास नू सेवा बख्शो राय कले दा प्यार तकदिया गुरदेव ने कहा चौधरी किसे समझदार ते भरोसे योग आदमी नू सरहंद भेज के साडे पुत्रां दी खबर मंगवा दे उसे वेले राय कले ने नूरे माही नू सरहंद वल तोर दिता सरहंद जाके जो कुछ माही ने सुनिया ओदी छाती पाट गई ओनी पैरी वापस मुड़ पिया आके रो रो के दसदा हाल नूरा सूरज चन्न बदलां विच आ गया है टोडर मल सरहंद दे रहण वाला सेवा बहु बडमुल्ली कमा गया है संस्कार लई मुल जमीन लेके शाहूकारे दी रीत निभा गया है महेंद्र सिंह नवाब जो कोटले दा शेर खान भी लाण तो पा गया है गुरु साहब दे चरणां ते ढाई के नूरा यू हा

मर्द ते सूरमे जहान ते नित नहीं जमदे। इधर लखमीर ने बजीदे नूं मर्दां वांग मोड़ के जवाब दिता, असीं राय जोधे पोत्रियां ए चौधरां छेवें गुरां ने बख्शियां, असीं गुरु जी तो सारा खानदान वार देंगे। साहब लखमीर ते बड़े खुश होए, इत्थे गुरु जी 9 महीने रहे, संगतां आउण लगियां। इत्थों साहब नेड़े पिंड बुरज मानने वाला जो अज कल राजगढ़ इत्थे भी गए। आखिर गुरु जी ने तीर तलवार अते बंदूकां दे जंग तो बाद गुरु जी ने कलम दा जंग लड़िया। ए इतिहासक फतेह दी चिट्ठी जफरनामा गुरु जी ने कांगड़ दे नेड़े एक संघने जंगल दे खूंजे च बह के लिखिया। जो कांगड़ दे ताली वाला दी जगीर सी, अज कल इत्थे गुरुद्वारा जफरनामा है। इस चिट्ठी विच गुरु साहब औरंगजेब नूं फटकारा ਇਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ।